0: Hello and welcome. You're watching Beyond World as One. I am Rhythm Sharma. Now we are cutting across to Prime Minister Narendra Modi, who is addressing the centenary celebrations of SRCC New Delhi. Listen in.
1: वेव बन गई थी, एक लहर सी चल पड़ी थी और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का और उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। साथियों, तब आपकी जगह आपके सीनियर बैठे थे, सीएम तो था लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था और संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े अटैक करूंगा, आरोपों की झड़ी लगा दूंगा, लेकिन

साथियों, विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बावजूद मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था। मैंने एक विजन रखा, सकारात्मक बातें कही। मैंने तब जो कुछ भी कहा वो मेरा कन्विक्शन था। मैं उन बातों को, उन सपनों को हमेशा से जीता आया, उस रास्ते पर ही चलता रहा। देश के लिए जी जान से जुटना देश के लिए जीने का जज्बा जो मेरे भीतर का भाव विश्व है, वो उस दिन 2013 में इसी मंच से मेरा वो भाव विश्व शब्दों की माला में एक एक करके प्रकट होता चला गया था। और मैं देर तक बोला था, फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि मैं कंटिन्यू करूं, तो उन्होंने जोर से कहा हाँ कंटिन्यू कीजिए। साथियों, मैंने उस दिन पानी के ग्लास का एक उदाहरण दिया था और देश में उसकी खूब चर्चा भी हुई थी। मैंने बताया था कि पानी से आधे भरे ग्लास को देखने के तीन नजरिए क्या होते हैं। एक, जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है। दूसरा, जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है। और तीसरा, जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। आधा पानी और आधा हवा से भरा। साथियों, ये वो समय था जब देश निराशा के दल दल में धंसा हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि मैं ग्लास को आधा नहीं देखता, अधूरा नहीं देखता, मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं। आधा पानी से आधा हवा से। और उस समय सब तो स्कूल में, लेकिन आज इंटरनेट पर जाकर के 2023 और 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे
एलओसी

0: पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। साथियों, एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर देश में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बड़ी है, माओवादी आतंक नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है।
1: Now that was Prime Minister Narendra Modi participating in the centenary celebrations of SRCC New Delhi. Shifting our focus to Nepal now, the death toll from the devastating floods in Nepal has risen to 1,344. More than 5,000 people remain unaccounted for. This as massive search and rescue operations continue across the flood-hit Himalayan nation. In the latest rescue mission, a Chinese national who was trapped inside Audit 4 tunnel of the flood-affected Upper Trishuli 1 hydropower project has been rescued. In another dramatic rescue mission, a woman was rescued after being trapped underneath mud and sludge inside her house for over 11 days in Nuwakot. This comes 11 days after floods and landslides struck Nepal on August 26th. Indian and Nepalese rescue teams are continuing joint operations to search for more workers who are trapped inside flood

0: किसी का जेवर चोरी हो जाता है, किसी के घर में डाका पड़ जाता है, फिर इसका मतलब है कि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट वो सब बेकार है।
1: Amid surge in BLA attacks, Pakistan's Punjab Chief Minister Maryam Nawaz says that her province is facing more threats from neighboring provinces than even from neighboring countries.

0: The Prime Minister Narendra Modi, in fact, attended the centenary celebrations at the Shriram College of Commerce, coinciding with the Teachers' Day, making the occasion particularly special as the nation is honoring the contribution of teachers and educators. This, in fact, was the Indian Prime Minister's second visit to this very prestigious Delhi University College, and he'd been there before he'd become the Prime Minister 13 years ago. When he'd addressed the SRCC, he was still the Chief Minister of Gujarat. And this was, of course, read as a launch pad for his projection as the prime ministerial face of the Bharatiya Janata Party back in 2013. Now, in his speech, the Indian Prime Minister stated that the SRCC's name has its own pride and values. And he lauded the alumni of the college and has called them the OGs as he sought to connect with the youngsters in the country. Listen in.
1: एसआरसीसी के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे. अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई ओजी है, जिन्होंने एसआरसीसी का नाम दुनिया भर में पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई.
0: All right, so that is what he said, that the alumni of SRCC are the actual original OGs. Now, responding to multiple narratives around India's recently released first quarter GDP rate growth data, which was pegged at about 7.8%, the Prime Minister said that many are simply not able to digest the India's growth rate. Listen in.
1: आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही है. अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है. जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे.
0: The Prime Minister also took an excerpt from his Red Fort speech in this year's Independence Day celebration and expanded on his remarks about intellectual naxals, or the dimagi naxals, as he's called them. Listen in.
1: Homeopathy ki goli, choti si goli di thi, lal ke liye se. आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी, दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है.
0: And furthermore, the Prime Minister also hit out at the leader of the opposition Rahul Gandhi's ongoing event of छात्रों की गूंज. He stated that truth will triumph over any form of lies.
1: जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी.
2: आधा ग्लास जो निराशावादी हैं, आधा ग्लास खाली है.